0: अटकत लुगड़े तुटकी चोरी
1: अगर तीतरी कुठ मिलते
0: आओ फटकत लुगड़े तुटकी चोरी
1: मग शिवन घेती
0: तुम शिवा

0: तो सोचो, कुछ तो समझो, कुछ तो सोचो, कुछ तो समझो, रहने दो बेकार की बातें।
1: बेकार की बातें?
0: हाँ हाँ, सुन लेगा बेदर्द जमाना दिल में।

0: क्या?
1: सुनो ना।
0: बोलो ना।
1: अपने घर को छोड़ के जाऊं, इतनी मैं नादान नहीं हूँ।
0: अरे तेरी

कभी हुआ है अकेली सी शाम में, धुंधे से एक चिराग के चेहरे के पास पास सरगोशियां सी ढूंढते

तो बता वो चुपने वाले सामने आ, चुप चुप के मेरा जी न जला, सूरज से किरण बादल से पवन कब तलक छुपेगी ये तो बता चुपने।

0: लता मंगेशकर आणि मोहम्मद रफी यांनी गायलेलं आनंद बक्षी यांचं गीत आता ऐकणार आहोत. आराधना या चित्रपटामधलं संगीतकार सचिन देवबर्मन.
1: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ. जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना. डन
2: डन
1: डन. अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है?
2: है.
1: गर्मियों की निहार है?

तो धर्म कर्म वाले हैं, समझी अजी, हम तो धर्म कर्म वाले हैं, तू है बेशरम। हम तो धर्म कर्म वाले हैं, तू है बेशरम। सबसे अच्छे घर मेरे झाड़ू लगाते हैं।

0: दखलिया। इस खूबसूरत मौके पर राजकुमारी को आप लोगों की दखल अंदाजी हरगिज हरगिज पसंद नहीं।
1: इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी।
0: सुना तुमने, इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी।
1: देखती क्या हो, गिरफ्तार कर लो इसे।
0: देखती क्या हो, गिरफ्तार कर लो मुझे। सुना नहीं, राजकुमारी कह रही है मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, वो मुझे यही रखना चाहती है।
1: क्या
0: इतना प्यार हो गया है मुझसे पहली मुलाकात में? अब तो मेरा जाना बहुत जरूरी है। ये खुशखबरी मैं अपनी माता जी को सुना देना चाहता हूँ कि मैंने अपने लिए बहुत खूबसूरत दुल्हन चुन ली है।
1: बदतमीज।
0: शुक्रिया। अच्छा सुनिए, वो मेरा पटका आपके पास रह गया है, जरा संभाल के रखिएगा, फिर आके ले जाऊंगा।
1: मारो इसे।
2: एवढी करायची मग निवडा विश्वास कोऑपरेटिव्ह बँक। 7 दिवसापासून 18 महिने आणि त्यापुढील कालावधीसाठी एवढी सुविधा, व्याजदर 3% ते 7.25% ज्येष्ठ नागरिक आणि रुपये 15 लाखावरील ठेवींना अतिरिक्त 0.50% व्याज आणि खास 499 दिवसांची स्पेशल एफ डी योजना 7.75% व्याजदरासह। तेव्हा आजच भेट द्या आपल्या जवळच्या विश्वास बँक शाखेला। अधिक माहितीसाठी संपर्क 9130002088। विश्वास बँक, विश्वासाचे नाते।
3: कुछ कहना है
4: मुझे भी, कुछ कहना है
3: मुझे, कुछ कहना है

देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।

0: राज कपूर की नीली आंखें, देवानंद की चाल, धर्मेंद्र का मर्दानापन और दिलीप से बाल, संजय का छेल छबीला, शशि सा शर्मीला और मनोज सा भोला भाला, शम्मी सा रंगीला, शौक हो वो राजेंद्र जैसा और सुनील सा बांका, जिसमें इतने गुण हो सकेरी जोड़ उसी से टांका, ना बंगला ना मोटर मांगू, ना कपड़ा ना गहना, ऐसा शौहर मिल जाए तो किस्मत का क्या कहना।
1: कमर हेलन की, आंखें पद्मनी की, गाल विम्मी के, अदा आशा की, शोखी साधना की, बाल सिन्नी के, नूतन का कद, शर्मीला की अंगड़ाई, बबीता की जवानी और नंदा की सिरहनाई, वहीदा का तबस्सुम और लीना की सी मस्ती, अदा में नाद में नखरे में हेमा मालिनी जैसी, नजर जिसका नजारा देखकर सरशार हो जाए, अगर बीवी मिले ऐसी तो बेड़ा पार हो जाए।

किसकी जान लोगी, क्या इरादा है? हमको तो बर्बाद किया है, और किसे बर्बाद करोगे? हमको तो बर्बाद किया है, और किसे

0: अंग्रेजी बोलता है सीधा साधा बोल।
1: अगर फिर कभी तुम फैक्ट्री में कदम रखा तो उनको बॉयलर में डाल देगा, तुम लोग पर इंजन चला देगा।
2: देखो लोग, देखो देखो तुम्हारा, देखो वो हरामखोर मुझे लात जूते से मारता रहा और तुम आकर खड़े हो गए। बस चुपचाप, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन वो तुम लोगों को भी मारेगा, मैं भी ऐसे ही खड़ा हो जाऊंगा चुपचाप आकर। एक दिन वो तुम सबको नौकरी से निकाल देगा, तुम्हें खड़े होकर हंसूंगा। उसने मुझे मारा और कोई बचाने भी नहीं आया, ठीक है। मार मार के लहू लुहान कर दिया सारे ने, काम भी किए जाओ और जूता भी खाए जाओ, ये इनाम मिला है 30 बरस की किस्मत का। देखा हो ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे,
3: सोता है बहुत जागा है ना।
2: ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे, कौन है जो उसको

0: भोले वाले ललुआ, भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी।
1: यही खा के तो जवान होगा बेटा।
0: भोले वाले ल...

0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी।
1: जा भग, जा भग।
0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी, धरेगा विदेशी बाबू बहिया तिहारी। थाम थाम थाम गोरी जरा थाम, नहीं लुट जाएगी राम कसम।
2: अरे